वो कुरान को बुलंद आवाज़ में पढ़ा जाए तो क्या हर्ज है, और वो भी इसलिए कि जितनी जल्दी से सूरह फातिहा पढ़ा जाता है वो सूरह फातिहा तो नहीं होता, पता नहीं क्या होता है। ये सबसे कम रफ्तार से जो पढ़ा जाता है वो मैं पढ़ रहा हूँ। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बच्चे जो है वो बाज़ कभी बुजुर्गान भी, अभी मैं सूरह फातिहा के दो जुमला कह पाता हूँ, दो आयत, वो सारी सात आयतें ख़त्म हो चुकी होती हैं। तो कुरान के लिए कहा गया कि वरत तल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील के साथ इन्हें ठहर ठहर के आराम से पढ़ना, और ख़ासकर सूरह फातिहा वो सूरा है कि जो वाजिब तौर पर हर नमाज में पढ़ना है, चाहे नमाज मुस्तहब ही क्यों ना हो, बाकी कोई सूरा वाजिब नहीं है। आप सूरह बाकी तब्दील कर सकते हैं लेकिन सूरह फातिहा वाजिब तौर पर पढ़ना है, इसलिए ये हमारे बच्चों से कहते हैं। आप बुजुर्गान के लिए जसारत नहीं करते कि जिस तरह हम पढ़ते हैं वैसे ही साथ में पढ़ें, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें, और इंशाल्लाह प्रैक्टिस करें कि सूरह फातिहा अच्छे तरीके से पढ़ें ताकि कम से कम नमाज में जो है मुश्किल पेश ना आए। खूब माजरत, इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम की सीरत के मौजू पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सीरत के मौजू पर यह गुफ्तगू है चंद दिनों। गुफ्तगू से पहले जो खुतबा पढ़ा जाता है, खुतबे की भी जितने हमद के कलिमात हैं वो सब के सब अमीर इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम के हैं, जो बहुत ही अजीम शान है। कभी पहले शायद तर्जुमा भी पढ़ चुके हैं इसका, कि सहीफ़ सज्जादिया की पहली ही दुआ में जो दुआ हमद के लिए है उसमें इमाम ने परवरदगार की जो हमद की है उससे कुछ कलिमात मैं आपकी खिदमत में खुतबे के तौर पर पेश किया। लेकिन हमारी जो बहस है वो है इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम की तर्ज ज़िंदगी, और इमाम ने अपनी ज़िंदगी में कौन सा तरीक़ा पेश किया। चूँकि हमारी ज़िंदगियों के लिए सबसे ज़्यादा जो अहम मसला है वो ये है कि हम किस तर्ज की ज़िंदगी जिएं, हमारी ज़िंदगी का तरीक़ा क्या हो। और बहरहाल अगर एक इंसाफ पसंद इंसान भी हो तब भी अगर अंबिया और आइम्मा की ज़िंदगी को देखेंगे तो मज़हब कोई भी हो कहने पर मजबूर होंगे कि उन्होंने बेहतरीन तर्ज की ज़िंदगी जी। अगर आम इंसान भी हो लेकिन इंसाफ पसंद हो, फिर अगर एक मुसलमान है, अगर एक शिया है, तो फिर आइम्मा की ज़िंदगी ख़ासकर और तमाम अंबिया की ज़िंदगी वो सब के सब खूबसूरत तरीन और बेहतरीन तर्ज ज़िंदगी था। इसलिए उसको बार बार देखना और बार बार उसे समझना, ताकि आज के दौर में जहाँ हर तरफ से हमें बातिल तर्ज ज़िंदगी दिया जा रहा है और बातिल तर्ज ज़िंदगी के लिए बहुत कोशिशें की जा रही हैं और हमारे तर्ज ज़िंदगी को बदला जा रहा है, हमारे तरीक़े ज़िंदगी, हमारे जवानों के तरीक़े ज़िंदगी को बदला जा रहा है, तो वहाँ पर जाकर वो पाकीज़ा तरीक़े ज़िंदगी ढूंढें, तलाश करें कि जो आकर हमारी ज़िंदगी को भी नूरानी बना दें और नूरानी बनाने के साथ साथ कामयाब तर्ज ज़िंदगी अदा करें। इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम की तर्ज ज़िंदगी को तीन हिस्सों में, इमाम की ज़िंदगी को तीन हिस्सों में देखने की कोशिश की गई। पहला हिस्सा ये था जो करबला के पहले का वाक़या है, वो बयान किया जा चुका। दूसरा हिस्सा है जो करबला यानी आशूरा के बाद का हिस्सा है, जिसमें कल आपकी खिदमत में बयान किया कि एक अजीम सीरत इमाम सैयद सज्जाद जो छोड़ गए हैं वो ये है कि वाक़ करबला को सिर्फ एक हादसा, सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि एक अजीम मोमेंट और एक अजीम तहरीक में तब्दील कर दिया, अलबत्ता जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की मदद से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, दीगर बीबियों की भी मदद से लेकिन सबसे ज़्यादा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की मदद से इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने करबला को एक अजीम तहरीक में तब्दील कर दिया। और जब तक करबला को तहरीक के तौर पर ना लिया जाए, फ़कत वाक़या, फ़कत किस्सा, फ़कत कहानी, फ़कत सवाब, फ़कत जन्नत के तौर पर लिया जाए, तो कम से कम हमने इमाम सैयद सज्जाद और जनाब ज़ैनब का हक अदा नहीं किया। अब ये कल बताया जा चुका क्यों, इसलिए कि जनाब ज़ैनब को लाया ही इसलिए गया था और इमाम सैयद सज्जाद को लाया ही इसलिए गया था ताकि करबला को फ़कत वाक़े में ना रहने दें, करबला को करबला में सिमटने ना दें, बल्कि करबला को एक अजीम तहरीक के तौर पर कूफे तक और

0: मा रायतो इल्ला जमीला।
1: क्योंकि इशारे में बात की थी, लिहाजा जनाब ज़ैनब ने समझा दिया सबको कि मैंने हुस्न व जमाल, अल्लाह की तरफ से मैंने जो कुछ देखा वह हुस्न व जमाल देखा, बाकी ये जो कुछ हुआ वो तेरे लश्कर की तरफ से था। इसके अंदर ये जुमला छिपा हुआ था कि बाद में आखिर में कहा कि हाउलाए कौमुन कतबल्लाहु अलैहिमुल क़त्ल, ये वो कौम थी जिनके ऊपर अल्लाह ने शहीद होना लिख दिया था। फबरदु इला मदाजेहिम, तो अपने मक्तल तक अपने कदमों से चल गया है, लेकिन अनकरीब तेरा उनका सामना होने वाला है, यानी तूने जो कुछ किया है वो जाकर अंजाम देखेगा, चूंकि दुनिया खत्म हो रही है लेकिन अनकरीब, और अनकरीब बहुत जल्दी वो आ गया। इब्ने ज़ियाद 32 साल की उम्र थी उस वक्त, ये सोच नहीं रहा था कि अनकरीब इतनी जल्दी आएगा, लेकिन फिर सिर्फ 5 साल बाद इब्ने ज़ियाद 37 साल की उम्र में फिन्नार हुआ, जो दो बड़े सूबों का गवर्नर था, बसरा और कूफे का, और जो हुकूमतों के लिए सब कुछ कर रहा था, वो ये तस्वुर नहीं कर रहा था कि इस उम्र में, इस जवानी की उम्र में मैं ख़त्म हो जाऊंगा। लेकिन जनाब ज़ैनब पहले ही कह, अनकरीब तेरा मुकाबला होगा, सामना होगा मेरे भाई से, मेरे अहले बैत से, तो वहाँ अल्लाह फैसला करेगा कि तूने क्या किया। अब इसमें और भी बहुत सारे पहलू हैं इस गुफ्तगू में, और भी जुमले भी हैं, लेकिन वहाँ भी अभी आपको नहीं रोकना है, चूँकि हम मंजिल तक पहुँच जाएँ जल्दी तक। यानी जब तहरीफ का ये असर देखा, जनाब ज़ैनब इसारत की हालत में आकर दिफा करती हैं कि अल्लाह की तरफ निस्बत नहीं दो, ये तुम्हारा अमल था, अल्लाह की तरफ से जो कुछ है वो हसीन है, अल्लाह की तरफ से जो कुछ है वो खूबसूरत है, अल्लाह की तरफ से जो कुछ है उस पर हम पशेमान नहीं हैं, उस पर हम शुक्र का सजदा करते आए हैं, हम शहादतें देते आए हैं और शुक्र का सजदा करते आए हैं, ये तो अल्लाह की तरफ से, लेकिन कत्ल तूने किया, तेरे सिपाही ने किया। ये सारे जुमले उसके अंदर इशारे में मौजूद हैं। लेकिन यही मारका फिर करबला आगे बढ़ने के बाद, कूफे से आगे बढ़कर शाम में भी यही मासल मसला पेश आया। जैसे ही शाम के दरबार में दाखिल हुए, इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम बीबियों के साथ, कल मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूँ, अब इस मजलिस को आप मसाए फ़ज़ाइल सब साथ में लेके चलें, मसला नहीं है। कल अर्ज़ किया कि शाम के बाज़ार में दाखिल होना और शाम के दरबार में दाखिल होना कूफे से बहुत जुदा था, फ़र्क था। कूफे में लोग देख देख के रो रहे थे, लेकिन शाम में लोग पत्थर मार रहे थे, और उससे भी ज़्यादा सख्त मंजिल थी कि शाम के दरबार में शराबियों के दरमियान में अली और फातिमा की बेटियाँ दाखिल हुईं। लेकिन जब उस मंजिल पर आई हैं और यजीद की निगाह इब्ने इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम पे पड़ी, तो हैरत में पड़ गया, कहा कि सबके सर आए हुए हैं, मुझे तो ये बताया गया कि सबको मार दिया गया, सबको कत्ल कर दिया गया, माफ़ कीजिए। फिर ये जवान कैसा है, ये कौन है, ये कौन बचा हुआ है? तो लोगों ने कहा कि ये अली इब्न हुसैन है। तो फिर उसने वही जुमला दोहराया, देखिए एक पूरी साजिश चल रही थी, क्या अल्लाह ने अली इब्न हुसैन को कत्ल नहीं किया? देखिए अभी तक एक मजहब बाकी है जबर का अकीदा रखने वाले, कि जो कुछ है वो मजबूर है इंसान, और इसकी एक लंबी बहस हमारे अकायद में की जाती है, इसीलिए हमें अदलिया कहा जाता है कि हम अदल के कायल हैं, अल्लाह अदल करने वाला है, अल्लाह मजबूर करके किसी अमल पे फिर किसी को सजा नहीं दे सकता। लेकिन अभी तक एक पूरा फिरका मौजूद है कलामी कि जो इस बात का कायल है कि इंसान मजबूर है, जबर का अकीदा है। ये जबर का अकीदा शुरू किया था किसने? बनी उमैया ने शुरू किया था। क्यों शुरू किया था? ताकि अपने सारे जुर्म से अपने आप को माफ करे कि जो कुछ करता है अल्लाह करता है, मैंने नहीं किया, जो कुछ हुआ अल्लाह ने किया। और ये अगर दरबारों से शुरू किया, लेकिन ये अगर कहीं और शुरू किया जाए, मुमकिन है सब सुकूत अख्तियार कर ले जाए, लेकिन अगर ये मसला जनाब ज़ैनब के सामने छेड़ा जाएगा, इमाम सैयद सज्जाद के सामने छेड़ा जाएगा, तो वो तो सुकूत नहीं है। सीरत का मतलब क्या? सीरत इमाम सैयद सज्जाद की सीरत यानी ये कि जहां भी जुल्म किया जाए, जहां भी दीन में किसी भी तरह की तहरीफ किया जाए की जाए, तो वहां पर इमाम सैयद सज्जाद की सीरत कहती है कि अत्ता हथकड़ियों में झगड़े भी हो तब भी बोलो, अगर दीन में तहरीफ हो रही, अगर दीन में तहरीफ हो रही। बाद लोग कहते हैं कि फायदा नहीं है, फायदा हो या ना हो, कम से कम हम तो लानत से बच जाएंगे, क्योंकि रसूलुल्लाह की रवायत है, हदीस है कि अगर बिदतें जाहिर हों और वहाँ पर अहले इल्म सुकूत अख्तियार करें और अपने इल्म का इजहार ना करें, तो उनके ऊपर फ़अलैहि लानतुल्लाह,

बस अदादारों अल्लाह किसी यतीम को परदेश में ये दिन न दिखाए। अब्बास के यतीमों ने जिस दम खबर सुनी कदमों में इब्ने ज़हरा के गिर के सदा ये दी, ज़हमत ना आप कीजिए, जिंदा है हम अभी, दरिया पे जाए हम जो इजाजत हो आपकी, कम से नहीं फिर भी वादा है खाली ना आएंगे, लाशा ना उठ सकेगा तो बाजू उठाएंगे।

0: बोर, हसन इब्न अली से कहें कि मस्कन की फिक्र ना करें, हम हिंदा के बेटे का रास्ता बंद कर देंगे ताकि वो हमसे मुलाक हो जाए। कहो कि बहुत सारे मोमिनीन उनके साथ हैं। खुदा हाफिज बोर, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।
1: कैस, इधर आओ, सुनो, इधर आओ।
0: किधर?
2: सरदार, आपको मालूम है दो आदमी गड़े में छिपे हुए हैं।
3: कहाँ?
2: वो सबसे पीछे थे और अचानक लश्कर से विदा हो गए।

0: कहां के रहने वाले हो?
1: कूफा।
0: तुम्हारा क्या करूं, तुम जैसे बुजदिलों का खून मेरी तलवार भी कबूल नहीं करेगी। उठो और अपने घरों को जाओ।
1: जी अच्छा, चलो चलो चलो।

0: इनकी तादाद हमसे 10 बराबर क्यों ना।
1: अम्र आओ तुम्हें बताऊं क्या क्या हुआ।

कह दो हमारे सब जासूसों और डाकुओं से कि जो भी हमारे उस जिंदान बान को पकड़ के लाएगा उसे 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे। अम्र आओ मेरे साथ।

0: क्या हो गया अमीर? क्या इब्ने आसिम से तुम्हारा कोई खास रिश्ता है?
1: नहीं।
0: अच्छा, तो फिर परेशान क्यों हो?
1: अमर, नहीं जानता। जब हसन इब्ने अली मेरे मुकाबले में आए तो मैं जानता हूं कि क्या करना चाहिए। सब्र करूंगा, तहम्मुल करूंगा और लड़ूंगा। जासूस और गारतगर उसके खिलाफ रवाना करूंगा। हजारों मकरो फरेब का सहारा लूंगा ताकि कामयाब रहूं। लेकिन जब मेरे जिंदानबान ने मुझे इस तरह धोखा दिया तो मैं हैरान हूं। मैं क्या करूं, ये मेरे बर्दाश्त से बाहर है। जी चाहता है कि अपने हाथों से उसकी आंखों के ढेलों को बाहर निकाल लूं। किस तरह हमारे महल में मकाम हासिल किया, हमारे चाहने वालों पर सिक्का जमाया और जिंदानबान बन गया। हसन इब्ने अली के जासूसों को महल के अंदर लाया और फरार हो गया। और अब मेरा मजाक उड़ा रहा है, हमारे जासूसों की गर्दन उड़ा रहा है, हमारे लश्कर के सरदार को अगवा करके पैगाम के साथ मेरे पास भेजता है। मेरे अजदाद की कसम, जब तक अपने हाथों से उसका खून न बहाऊं मैं सुकून नहीं लूंगा।
0: हाँ, मैं जानता हूँ जानता हूँ, मुलाजिमों की सरकशी को बर्दाश्त करना बड़ा सख्त काम है। लेकिन अमीर, हमें इससे ज़्यादा अहम मसाइल दरपेश हैं। सुनो अमीर, उबैदुल्ला इब्ने अब्बास अपने लश्कर के साथ मस्कन पहुँच चुका है और अब दोनों लश्कर एक दूसरे के मुकाबले हैं। हकीकत में इसी नुक्ते पर हमारा और हसन इब्ने अली की फौजों का आमना सामना जंग का फैसला करेगा।
1: उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास के साथ अब हम क्या चाल चलें?
0: नहीं मालूम, यहां मैं बहुत मजबूर हूं। जानता हूं कि उससे लड़ना कोई अच्छी बात नहीं, लेकिन किस तरह की साजिश करूं मेरी अकल काम नहीं करती। सोचूंगा। उबैदुल्ला का मसला एक अनोखा मसला है।

0: उसे सोने चांदी के सिक्कों और मनसब से नहीं खरीदा जा सकता। वो बनू हाशिम से है और हसन इब्ने अली का चचाजाद भाई है, उसके लश्कर का सरदार भी है। उसके दिल पर एक ऐसा जख्म है जिसका मदावा किसी मरहम से नहीं हो सकता, इसलिए कि तुमने उसके दो बेटों को कत्ल किया है।
1: ए कहां जा रहे हो?
0: मुझे जाने दो अमीर, मैं कुछ सोचूंगा।

0: उठो उठो इंदा की बेटी, अब मुझे हल मिल गया है कि मुझे क्या करना चाहिए।
1: क्या बात है अम्र, क्या है अम्र?
0: उठो तो, मुझे हल मिल गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मैं समझ गया हूं कि किस तरह उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास घुटने टेकेगा। हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि मुकाबला किस तरह बगैर खून रेजी के तमाम होगा। बुलाओ अपने मुशावरीन को।

0: कहाँ है तुम्हारे जासूसों के सरदार?
1: हैं, कुछ यही हैं, कुछ बिखरे हुए हैं।
0: अपने जासूसों के साथ अच्छा राबिता है?
1: हाँ, क्यों नहीं।
0: इब्ने अब्बास के लश्कर में भी,
1: हाँ
0: मदायन में भी?
1: हाँ
0: तुम्हारे बलवाई क्या कर रहे हैं?
2: फैले हुए हैं, हर जगह पे हैं।
0: उनसे तुम्हारा राबता है?
2: हाँ,
0: बहुत अच्छा। तुम्हारे मुलाजिमों से फायदा उठाया जा सकता है?
2: क्यों नहीं।
0: तो फिर सबको हुक्म दो कि जिसे चाहें जैसे चाहें मार डालें, ख्वाह उबैदुल्लाह की छावनी में हो या मदायन में।
3: किन लोगों को मार डालें?
0: मुहिम नहीं है, बस जो भी हाथ लग जाए, जहां लग जाए वहीं मार डाला जाए।
1: मगर सरदार, हमारे जासूस और लुटेरे एक दूसरे से बेखबर हैं और मुमकिन है कि आपस में ही एक दूसरे को कत्ल कर डालें।
0: जाए जहन्नम में, मार लेने दो। हुक्म वही है जो मैंने दिया, जो हाथ लगे उसे अमान न देना।
3: अम्र, ये क्या करना चाहते हो? कैसा हुक्म दे रहे हो?
0: क्या तुम्हें उबैदुल्लाह नहीं चाहिए?
3: क्यों नहीं।
0: फिर हुक्म दो कि जो कुछ मैंने कहा इसका इजरा करें। ऐसा काम करूंगा कि उबैदुल्लाह कुछ ही मुद्दत में हैरान और परेशान, सर तस्लीम खम किए हुए तुम्हारे पास होगा। फिर फौरन इजरा करें।
3: जो अम्र कहे अंजाम दो।
0: बस जाओ।
3: अब बताओगे तुम्हारे दिमाग में क्या है या नहीं?
0: अब फौरन कासिद को कूफा रवाना करो, तुम्हारे उस आदमी के पास। क्या नाम था उसका?
3: अम्र इब्न हुरैस।
0: हाँ, अम्र इब्न हुरैस। फौरन एक कासिद को कूफा रवाना करो और उससे कहो कि कूफा के बुजुर्गों, सरदारों और कबाइल के रईसों से तुम्हारी हिमायत में और हसन इब्न अली की मुखालफत में एक खत लिखे और फौरन यहाँ भेज दे। क्या खवारिज ने हसन इब्न अली की बैत कर ली है?
3: हाँ।
0: तो फौरन एक खत खवारिज को भी लिख दो और उनसे कहो कि बिला तअम्मुल अपने सरदार को मदायन भेजें और हमारे हुक्म का इंतज़ार करें, ताकि सिर्फ इशारा पाते ही बलवा व फसाद बर्पा कर दे और मदायन की छावनी को आग लगा दे।
3: नहीं समझ सका तुम्हारे दिमाग में क्या है।
0: समझ जाओगे, जल्द समझ जाओगे।

0: अरे मार डाला, तुम लोग कहाँ हो? अरे एक साथी को और मार दिया। अरे किसने मारा? अरे क्या हुआ?
1: क्या हो गया? ईशोर कैसा है? जाओ देखो क्या हुआ है, चलो जाओ।
2: क्या हुआ?
1: जाओ तुम भी जाओ, जाके देखो वहां क्या हो रहा है, जाओ देखो क्या हुआ है।
2: उनका क्या जुर्म था?
3: सिपाहियों को गल्ला और चारा देने से इनकार कर दिया था।
2: अमराज,
4: अमीर के सरदारों पर सलाम। आखिर तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो? अजब, अमीर के सरदार आखिर खेमे से बाहर क्यों खड़े हैं?
5: अमीर अभी सो रहे हैं और कुछ ऐसे मसाइल पेश आ गए हैं जिनसे अमीर को बाखबर करना जरूरी है।
4: तुम्हारी दिहाड़ी मैं लूंगा। अगर अपनी दिहाड़ी मुझे देते हो तो फिर मैं अमीर को नींद से उठा सकता हूँ।
3: हमारे पास जो कुछ भी है सरदार का ही तो है।
4: वल्लाह सरदार, तेरी सखावत तो शुजाअत से भी ज्यादा है। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि मरवान अमीर के सोते रहने को बेदार होने से बेहतर समझता है, और ये जजादात भाई हाजिर है कि जो कुछ है वो दे दे, बस अमीर जागने ना पाए।
5: नहीं मालूम कौन सा मंत्र पढ़कर अमीर पर फूंक दिया है, जब चाहता है अमीर से जाकर मिल लेता है, और हम अगर जरा सा काम है तो घंटों खड़े रहे हैं धूप में।
3: मेरे भी समझ में नहीं आता हम क्या करें। ना तो उसकी बातें संजीदा होती हैं कि हम भी जवाब दें, और ना वो मजाक करता है कि हम हंसे।
6: अब अमीर से मिल सकते हो?

0: बताओ क्या खबर है।
1: हमारे जासूसों ने खबर दी है कि अब्दुल्लाह इब्ने याकूब रास्ते में है और किसी भी वक्त मस्कन पहुंच सकता है।
0: कब तक पहुंचेगा?
1: कल तक।
0: कितने लोगों के साथ?
1: 5,000, जिनमें से 3,000 घुड़सवार हैं।
0: बस वक्त पे पहुंच जाए।
1: अमर इब्ने हुरैस ने कासिद भेजा है। उसने लिखा है कि शिम्र, अशअस और इब्ने उमैर ने अमीर की इताअत और बंदगी का ऐलान किया है।
0: ये नामर्द लोमड़ी सिफत, अली को मार डाला, अब मेरे कत्ल की साजिश है। हसन इब्ने अली को हमसे जंग पर मजबूर करते हैं और जब जंग की बू आती है तो बंदगी का ऐलान कर बैठते हैं। इनके बारे में तो कुछ समझ में नहीं आता। इस मामले में तो अमरियास से मशवरा करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उसी से काम हो सकता है। बस हसन इब्ने अली ने उस जासूस को कत्ल करके हकीकत में मुझे रुसवा कर दिया।
2: अमीर, मैं एक चाल चलना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें।
0: चाल? कैसी चाल?
2: जंग की चाल।
0: जंग? कौन सी जंग?
2: हसन इब्ने अली के साथ जंग?
0: किसने कहा है कि हम हसन इब्ने अली के साथ जंग लड़ेंगे?
2: नहीं लड़ेंगे।
0: नहीं लड़ेंगे मेरे सरदार बुजुर्ग, मेरे चचा की औलाद मरवान बिन हकम, तुम उस तजुर्बे को फिर से आजमाना चाहते हो? तुम जंगे जमल में नहीं थे?
2: मैं था उसमें।
0: क्या हुआ?
2: हम हार गए।
0: तो सिफीन में क्या हुआ?
2: उसमें भी था।
0: क्या हुआ?
2: खुदा बेहतर जानते।
0: जंग में शिकस्त हुई,
2: बात जाकर हकमियत पे रुकी।
0: वो चाल मैंने और अमरियास ने सोचा था। खवारिज धोखा खा गए और इब्ने अबी तालिब को जंग रोकने पर मजबूर कर दिया। क्या ऐसा नहीं था?
2: जी ऐसा ही हुआ।
0: तो ये जंग नहीं थी जिसने हमें नजात दी? अगर जंग किए होते तो न तुम होते और न मैं और ना ही किसी का नाम निशान। क्यों?
2: हो सकता है अमीर।
0: हो सकता है नहीं, हुआ है। अब तुम दोबारा तजुर्बा करना चाहते हो?
2: इस बार हम अली से नहीं लड़ रहे हैं। इस वक्त जो हमारा मद्दे मुकाबिल है वो हसन इब्ने अली है।
0: हसन इब्ने अली को क्या समझा है? सिफीन में नहीं देखा उसने और उसके भाई हुसैन ने क्या किया? किस तरह तलवार चलाई? हम में से कौन उसका हरीफ बन सकता है? तुम, मैं, जहाक, मुगैरा या वो छोटा शैतान अमरियास? अगर हमें मुबारजे के लिए बुलाएं तो तुम उनका मुकाबला करोगे?
2: बिल्कुल करूंगा।
0: अहमक हो। ये वैसी ही गलती है कि ताकत के नशे में चूर अम्र इब्ने अब्दवद ने की, लेकिन उसकी लाश मैदान में बाकी रह गई। अगर मैं और अमरियास अब तक जिंदा हैं तो सिर्फ इसलिए कि हमने उसका सामना नहीं किया। अली ने हमें सिफीन में जंग के लिए बुलाया और मैंने कबूल नहीं किया, वरना बनी उमैया की शैतनत का बोरिया बिस्तर हमेशा के लिए कब का बन चुका होता। बेशरम हूं, हम मजबूर हैं अपनी बका के लिए हकीकत को कबूल करें। उसके मुकाबले का वाहिद रास्ता बस फरेब और धोखेबाजी है, और वो भी कि जिस तरह अमरियास समझता है। अब सुनो, बावजूद इसके कि अमरियास इतना खबीस व मक्कार, चालबाज, बेहूदा लालची और हद से तजावुज करने वाला बदतमीज है, लेकिन नहीं मालूम फिर भी मैं उसको क्यों चाहता हूं। हसन इब्ने अली पूरी तरह से जंग चाहता है, लेकिन हम हैं कि इस वक्त सुलह की आवाज उठाना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अमरियास ने सिखाया है। अब जाओ और लश्कर को संभालो ताकि सुलह उसी तरह अंजाम पाए जैसा मैं चाहता हूं। अमरियास से कहो कि आ जाए।

0: जाओ, अमीर का बुलावा है।
1: क्यों, किस लिए?
0: नहीं मालूम।
1: तुमने क्या कह दिया जो अमीर चीख रहा है?
2: अगर अमीर मुनासिब समझे तो वो खुद तुम्हें बता देंगे।
1: तुम लोगों ने अमीर की सुबह बर्बाद की होगी और अब मैं उसका जुर्माना अदा करूं?
0: किस जुर्माने की बात करते हो सरदार? हाकिम मिस्र खुद अच्छी तरह जानता है कि इन मसलों से कैसे निपटा जाता है।
1: हाँ, अब से अमीर के नालायक सरदारों के मसले भी मुझे ही निपटने पड़ेंगे।

0: आम्र, क्या बात हो गई है? सुना है कि माविया की तरफ से कोई कासिद आया है।
1: अमीर ने तुम सबको माफ कर दिया है और साथ में इनाम देने का वादा भी किया है।

0: क्या? नहीं मालूम।
1: और साथ में हुक्म दिया है कि तुम में से एक मदायन जाए और उनके फरमान का इंतजार करे।
0: नहीं बताया है कि कब?
1: अपने वक्त पर लिखा है कि वक्त आने पर बता दिया जाएगा।
0: इब्ने उमर, मैं कूफे में रहूंगा। अशस भी जोदा और हसन इब्ने अली के घर में रहेगा। तुम जाओ।
1: और हाँ, हमसे कहा है कि तमाम कबाइल के बुजुर्ग और रुआसा शुरफा उनकी हिमायत में और हसन इब्ने अली से बेजारी के खतूत लिखें और मस्कन की जानिब इरसाल करें, और तुम भी इसमें हमारी मदद करो।
0: मेरी तरफ से अमीर को लिख देना कि अगर हसन इब्न अली कूफे में कदम रखें तो उन्हें 10 बस्ता अमीर के हवाले कर दूंगा।
1: अच्छा भाई, लिख देता हूँ।

0: मेरी तरफ से भी लिख दो।
1: ठीक है, और यह भी लिखो कि उर्वत इब्ने उमैर अमीर के हुक्म पर अमल करते हुए फौरन मदैन की तरफ चल पड़ा।
2: ठीक है, लिख दूंगा, तुम बिल्कुल मुतमइन रहो।
0: आम्र, तुम कोई ऐसा काम करो कि पिसरे अबू सुफियान हमारी वफादारी पे एतमाद करे और पुराने कीनों को भूल जाए।
2: तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, सिर्फ अमीर के हुक्म की तामील करो।

0: खुश आमदीद अहमद, बाबा क्या कर रहे हैं?
1: ठीक है, तुम्हारा क्या हाल है याकूब?
0: सफर कैसा रहा?
2: सफर अच्छा था।
0: अच्छा, हर्ब क्या कर रहा है?
1: शरारतें कर रहा है। उबैदुल्लाह की तरफ से खत लाया हूँ।
0: तो लाओ, हसन इब्न अली का खेमा यहीं पर है।
1: क्या बात है, लगता है हालात ठीक नहीं।
0: जासूस पकड़ा गया है
1: यहाँ भी?
0: हाँ, माविया के लोग मुसलसल फितना फैला रहे हैं।

0: ये कैसी जंग, कैसी जंग?
1: अम्र, क्या ये फरियादें हसन इब्न अली की अफवाज के दिल हिला सकती हैं?
2: सबकी नहीं, लेकिन बुजदिलों को ज्यादा मुस्तरिब कर देंगे, और जो वहम शक में मुब्तला है उनके कदम उखड़ जाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि उबैदुल्ला भी हमारी तरफ कदम बढ़ाएगा।
0: सिर्फ उबैदुल्ला नहीं,
2: उबैदुल्ला ही हमारी कामयाबी का राज है। उसे धोखा व फरेब के चाल में फंस लो, फिर हसन इब्न अली के चाहने वालों के बस की बात नहीं।
0: रात में लोगों पे हमले, शब खून क्यों नहीं करता? रूबरू मुखा

0: ये कैसी जंग है सरदार, अपने साथी पर भी एतबार नहीं किया जा सकता।
1: भाई भाई पे एतबार नहीं कर सकता, आंखें बंद करो तो जासूस और गारती कत्ल करने के लिए आ जाते हैं।
0: हमारा भी तो सोचो सरदार,

0: बाबा मुझे पागल कहा करते थे। तुम पागल हो गई हो उम्रा? इतने मकाम और मनसब वाले लड़कों को तुम्हें पाने की तमन्ना है और तुम एक किसान को लिए बैठी हो कि जिसके पास एक घास फूस की बू आती है। जाहिर है उमरा और दूसरी लड़कियों में यही तो फर्क था कि उन्हें एक शौहर चाहिए था और मुझे एक हम सफर, उन्हें एक साथी चाहिए था और मुझे एक हमराही। मुझे ऐसी मंजिल चाहिए थी कि जिसकी मैं मुरीद बन जाऊं, मंजिल के जिसकी निशानी मोहब्बत अली है। मुख्तार और उसकी आतिशी आंखें तो सिर्फ एक बहाना था। वैसे मैंने गलत इंतखाब नहीं किया, तुम्हारी आंख का जख्म मेरा गवाह है।
1: बहुत खूब मेरे हमसफर, सुनो, मैं कल सुबह सूरज निकलते ही निकल जाऊंगा।
0: कहाँ जाने का इरादा है?
1: अपना राज सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं उम्रा, मैं मक्के की तरफ जा रहा हूं।
0: तो मैं तुम्हारी हमसफर बन जाऊंगी? तुम तो अकेले सफर नहीं करना चाहते ना?
1: तन्हा नहीं हूं, तुम मेरे दिल में हो।
0: काश मैं तुम्हारे साथ भी चल सकती।
1: उमर साद और शिमर अपने जिलजोशन जैसों ने मेरी राह पर जाल बिछाए हुए हैं। तुम्हारे होते हुए मैं उनके जाल से निकल नहीं पाऊंगा।
0: तुमने मुझे जिंदान के वाकयात और मैसम में तमार्क के बारे में बताया, तो फिर तुम्हारे कयाम का क्या होगा जब तुम कूफे से फरार करना चाहते हो?
1: फिलहाल कयाम के लिए हालात मुनासिब नहीं है उमरा, मुझे इस कयाम के लिए कम अज कम 1-8 साल का वक्त चाहिए। मैंने सुना है आले जुबैर ने मक्के में यजीद की मुखालफत का परचम लहरा दिया है और यजीदियों से जंग की तैयारी कर रहे हैं। मैं मक्का की तरफ जाऊंगा और अगर हो सका तो आले जुबैर के साथ मिल जाऊंगा और यजीद के चेहरे पर खाक मल दूंगा।
0: काश मक्का के बजाय ईरान चले जाते मुख्तार, तुम ईरान में जल्दी मंजिल पालोगे।
1: तुम ठीक कहती हो उमरा, मगर मुझे अपने दिल को रूहानी गिजा देनी है। मैं अपनी रूह को आबे जमजम से धोने जा रहा हूं।

0: ना और दुल दुल का ख्याल रखना।
1: बेफिक्र रहो भाई, अपने आप से ज्यादा ख्याल रखूंगा। दुलदुल की तरफ गया, उसके सर पे हाथ फेरा, अपना चेहरा दुलदुल के चेहरे पर मला, दुलदुल के कानों में एक विर्त पड़ा, दुलदुल ने उसे सूंघा, उसने भी दुलदुल को प्यार किया। अब आया हमारी तरफ के बानो उमरा के बारे में हुक्म करें। जरबी, बानो उमरा से गाफिल मत होना, कहीं खुदा ना खास्ता किसी मुश्किल में न पड़ जाए। मुर्गी के दूध से लेकर आदमजात की जान तक जो मांगे उसे दोगे।
0: जरबी, बानो उमरा से गाफिल मत होना, कहीं खुदा ना खास्ता किसी मुश्किल में न पड़ जाए। जो भी मांगे मुर्गी के दूध से लेकर आदमजात की जान तक उसे दोगे।
1: खुदा ने चाहा तो कहां का इरादा है अबू इसाक?
0: जहां मुझे तकदीर ले जाए।

0: तुम रहजन हो?
1: मुसाफिर हूं।
0: कहां जा रहे हो?
1: क्यों?
0: क्योंकि मौत की सिमत जा रहे हो।
1: मजबूरी है।
0: सहरा से वाकिफ हो?
1: तुम लोगों जितना नहीं।
0: मजीद आगे जाओगे तो खुद ही समझ जाओगे कि सहरा क्या होता है। इस सहरा से अकेले गुजरना नामुमकिन है, वो भी उस सवारी के साथ जो तुम्हारे पास है। सहरा की सवारी ऊंट है, घोड़ा नहीं। तो ज्यादा सफर क्या है तुम्हारा?
1: कुछ मुख्तसर सा रोटी पानी है।
0: लगता है तुम सहरा और उसकी मुश्किलात से अनजान हो। मेरी मानो तो लौट जाओ और अपने घोड़े को एक मादा ऊंट से बदल लो जो दूध देती हो। सिर्फ दूध और ऊंटनी के साथ ही इस सहरा से जिंदा सलामत जा सकते हो।
1: तो तुम लोग क्यों यहाँ सफर कर रहे हो?
0: जाहिर है अनजान रास्ते छोटे होते हैं, बशर्ते के रास्ते जानते हो तो। क्या अपने नाम को भी अपनी मंजिल की तरह छुपाना चाहते हो?
1: क्यों पूछ रहे हो?
0: तुम्हारी आवाज काफी जानी पहचानी लग रही है मुझे। अगर चेहरे से दस्तार उठा लो तो शायद तुम्हें पहचान लूं। मेरा नाम अबल गरक है, कबीला सकीफ से।
1: अबल गरक?
0: मुझे पहचान लिया तुमने?
1: तुम्हारा नाम सुना है मैंने। मैं मुख्तार हूं।
0: मुख्तार

0: ये तुम हो अबू इसहाक? खुदा की हिकमत तो देखो, उस जगह दुआ कबूल करता है जहां सोचा भी ना हो। मुझे आरजू थी कि तुम्हें करीब से देखूं और तुम्हारा हाथ चूम सकूं। तुम कौमे सकीफ के लिए फखर का बाईस हो अबू इसहाक। तुम्हारी शुजातों का चर्चा सुना है मैंने सकाफी शेर। तुम पर दरूद, खुदा तुम्हारी पुष्पनाई करे। अरे मेरे बेटे, अबू इसहाक की ऊँटनी के दूध से पजीराई करो।
1: नहीं शुक्रिया बरगरक।
0: तुम्हारी आंख को क्या हुआ अबू इसहाक?
1: जख्म है जो एक दुश्मन ने मुझे लगाया है।
0: उनके हाथ नाकारा हो जाएं, ये दुश्मन के मुख्तार से डरने की निशानी है। वैसे एक बात तो है कि जो मुख्तार को जख्म लगा सके वो कोई माहिर लड़ने वाला ही होगा।
1: ऐसे कदमों के निशान मेरे सामने छोड़ कर के कभी भूल नहीं सकता।
0: तुम्हारे बारे में इब्ने मरजाना की कैद की खबर मिली थी मुझे, उसके कैद से कैसे भागे अबू इसहाक?
1: मैं भागा नहीं, जिंदान से आजाद किया गया है ताकि मुझे शहर बदर करें।
2: बिस्मिल्लाह मुख्तार, नाचीज सा नजराना है, नोश कीजिए।
1: बहुत शुक्रिया नौजवान, अभी दिल नहीं चाह रहा।
0: पियो अबू इसहाक, कुछ ताजा दम हो जाओगे।
1: मुझे रास्ते की सख्तियों की आदत करनी होगी।

तुम्हें क्या लगता है दोस्त, एक तन्हा खैमा इस बेआब गया सहरा में मशकूक है ना? क्या कहते हो, कोई जाल तो नहीं? कुछ सुन के देख लो, कुछ सुनने की कोशिश करो।

0: कोई अंदर है क्या?
1: अगर जरा सा भी हिले तो पूरा खंजर तुम्हारे गले में घोंप दूंगी। अपनी तलवार मुझे दे दो।
0: यकीन करो मैं कोई डाकू नहीं।
1: बकवास बंद करो। ये खंजर इतना तेज है कि हाथ के इशारे से तुम्हारी जान ले लेगा। अपनी तलवार मुझे दे दो। हाथ पीछे। हाथ पीछे। जल्दी।

0: माफ करना बहन, मैं तुम्हारे खेमे में बगैर इजाजत घुसना नहीं चाहता था। मैंने आवाज दी मगर जवाब नहीं मिला।
1: जवाब नहीं सुनना झांकने चले आए ताकि खेमे के अंदर के राज से आगाह हो जाओ। इतना नहीं सोचा कि खेमा कोई सहरा का पौधा नहीं है, कोई इसका मालिक भी होगा। मालिक की इजाजत के बगैर क्यों घुसे?
0: आप बरहक हैं, मुझसे गलती हुई है।
1: कौन हो तुम?
0: मुसाफिर हूँ।
1: ये नहीं पूछा क्या हो, मैंने पूछा कौन हो।
0: आदमजाद हूँ।
1: ओहो, मैं समझी सहराई जानवर हो।
0: मैं अपने दुश्मनों की वजह से गुमनाम सफर कर रहा हूँ। अपनी मंजिल को भी छुपाऊंगा ताकि मेरे कदमों के निशान न ढूंढ लें।
1: कैसे अहमक दुश्मन है तुम जैसा बेहुदा इंसान, क्या किसी का खौफ रखेगा? ये दुश्मन आखिर है कौन जिसके खौफ से सहरा की तरफ निकले हो?
0: मेरे दुश्मन कुछ मुट्ठी भर जानवर हैं कि जिन्होंने रसूल खुदा के घराने को नैनवा के सहरा में टुकड़े टुकड़े कर डाला। इन लोगों को इंसान का खिताब देना इंसानियत की तौहीन है।
1: अब तो वाजिब है कि मैं जानूं कि तुम कौन हो। मैं दश्त नैनवा के एक शहीद की बीवी हूँ। तुम जैसा शख्स जो यजीदियों के खौफ से सहरा की तरफ निकला है, उसने ज़ुहैर इब्न कैन का नाम तो सुना होगा।
0: तुम मरहूम ज़ुहैर इब्न कैन की बीवी हो?
1: हाँ, मेरा नाम दुल्हन है। तुम कौन हो?
0: मैं मुख्तार हूँ, बेसर अबू उबैदा सकफी।
1: तो तुम हो वो मुंतकिम कर्रार?
0: मुंतकिम कर्रार?
1: हाँ, ऐसा इंतकाम लेने वाला जो शदीद हमले करता है।
0: माफ करना बहन, तुम इस सहराए बरहूत में तन्हा क्या कर रही हो?
1: ये एक पेचीदा कहानी है। मैं इस मुकाम पे जुहैर से अलग हुई थी। जुहैर ने जब अज़्मे हुसैन कर लिया तो मुझे तलाक दे दी। वो नहीं चाहता था कि उसके बाद दुश्मन मुझे उसकी बीवी होने के जुर्म में तकलीफ पहुंचाए या कैदी बना के ले जाए। मैंने कसम खा ली कि जब तक यजीद की मौत की खबर न सुन लूं, इस सहरा से हिलूंगी नहीं। मैं जुहैर की तलाक का सिला चुकाना चाहती हूँ।
0: सुभान अल्लाह, जुनून इसी को कहते हैं। मैं जुहैर को जंग योमुल जिसर से जानता हूं, वही जंग जो कादसिया की फतह का बायस बनी। उन दिनों मैं एक 13 साल नौजवान था। मेरे मरहूम वालिद साहब मुसलमानों की फौज के सरदार थे, मुझे भी अपने साथ मैदान जंग ले गए थे ताकि बकौल उनके मैदान को पहचानूं।

0: उन दिनों जुहैर एक दिलेर और शुजा नौजवान था जो कि बगैर परवाह के मर्दानावार लड़ता था। वाकई शुजात और दलेरी में अपनी मिसाल आप था। वो जब जब मैदान में जाता था, मेरे बाबा मरहूम मुझसे बड़ी हसरत के साथ ये चाहते थे कि मैं उसे गौर से देखूं और गैरत तो शुजात सीखूं। मैं बेवकूफ बच्चा था जो जुहैर से हसद करता था। बारहा मेरे बाबा के कहने पर जुहैर ने मुझसे चाहा कि हम जंग की मशक करें, मगर मैं हर दफा सर के दर्द और पेट के दर्द का बहाना कर लेता था, मगर उसके साथ जंग की मशक करने पर आमादा नहीं होता था। मेरे मरहूम बाबा उसी जंग में शहीद हुए। बाबा की मौत के बाद मुझे कम उम्र के बिना पर कूफा भेज दिया गया। उसके बाद फिर मुझे जुहैर की कोई खबर न मिली, यहां तक कि कई साल के बाद सुनने में आया कि एक नामवर ताजर हो गया है और खूब दौलत कमाई है।
1: ठीक सुना था, जुहैर साला साल तिजारत में मसरूफ रहा और जंग और हुकूमत में उसका कोई दखल नहीं था। उसका मानना यह था कि दो मुसलमान गिरोहों के दरमियान जंग रसूल खुदा की नाराजगी का बायस बनता है।
0: तो फिर क्या हुआ कि उसकी राय बदल गई? क्या हुआ कि दुनिया से दिल हटाकर नैनवा के काफिले में पहुंच गया?
1: बहुत अजीब सी दास्तान है मुख्तार, बहुत अजीब। हम हज को गए हुए थे। हज के बाद कूफे के अजम से निकले तो मक्के के करीब ही मौला हुसैन का काफिला नजर आया। चंद मंजिलों तक हमारा और मौला हुसैन का रास्ता एक ही था। जुहैर को पसंद न था कि मौला हुसैन के काफिले के साथ सफर करे। हम रुक गए ताकि मौला हुसैन एक मंजिल आगे निकल जाएं। जब मौला हुसैन चले जाते थे हम रुक जाते थे, और जब मौला हुसैन रुकते थे हम आगे बढ़ जाते थे। तकदीर ने एक मंजिल में दोनों काफिलों को मिला दिया। मौला हुसैन ने कासिद भेजा और जुहैर को अपने हुजूर तलब फरमाया।

0: दुनिया का काम बड़ा निराला है। जिस चीज से मुंह मोड़ो वो तुम्हारी बवाल हो जाता है। मुझे पता था अगर मौला हुसैन समझने की ये जुहैर इब्ने कैन का काफिला है तो मुझे दस्तबरदार न होंगे।
1: क्या आसमान टूट गया, शक्ल कमर हो गया है या सूरज को मौत आ गई? शायद कोई वाजिब काम होगा जब ही कासिद को भिजवाया है।
0: वाजिब काम? उनका वाजिब ये होगा कि उनकी दावत को कबूल करूं और उनके साथ उफा जाऊं।
1: अगर बुलाते हैं तो कबूल मत करना, माजरत कर लेना। कह 2000 तरह के मशगले हैं तुम्हारे, तुम्हारा माल लावारिस है और तजारत ठंडी है। मैं उनके साथ कुफे नहीं जा सकती।
0: नहीं दुल्हन, न जाना बेहतर है बनिस्बत ये कि मैं माल और तजारत का बहाना करूं। मेरी जगह जा नमाज पर ही ठीक है, तजारत करता हूं और नमाज पढ़ता हूं। खुद को उम्र के इस हिस्से में उस झगड़े में मुलविस नहीं करना चाहता जो दुनिया और आखिरत के नुकसान का बाइस है।
1: जुहैर, फर्जंदे रसूल ने तुम्हें बुलाया है, खुदा की कसम न जाकर तुम अपने आप पे जुल्म कर रहे हो।
0: दुल्हन, मैं उसी दिन से अपनी तलवार को अलविदा कह चुका हूँ जिस दिन उम्मत रसूल में फितना शुरू हुआ। कसम खाई है कि जब तक मुसलमान मुसलमान के सामने खड़ा है मेरी तलवार नयाम में ही रहेगी। मैं अपनी तलवार से किए हुए हद को तोड़ नहीं सकता। मौला हुसैन के साथ हो जाना यानी उस जंग में कूद जाना जिसका खुदा ही जानता है कैसा बुरा अंजाम है।
1: तुम एक ही बात को लिए हुए क्यों बैठे हो जुहैर? किसने कहा अपनी तलवार से किए हुए हद को तोड़ दो? किसने कहा कि मौला हुसैन के साथ कूफे चले जाओ? ये बेअदबी के फर्जंद रसूल के बुलावे को ठुकरा दो और उनकी बात सुनना तक गवारा न करो। कहीं डर तो नहीं गए हो?
0: किस चीज से डरूंगा?
1: मुझे क्या पता, ये सारे बहाने डर की निशानियां हैं। तुम्हें मौला हुसैन का तुमसे जान मांगने का डर है या माल मांगने का खौफ? अपनी इज्जत

की फिक्र करो जुहैर, जब लोग सुनेंगे कि मौला हुसैन ने जुहैर को बुलाया था और जुहैर नहीं गया, तो लोग तुम्हें कमजोर दिल और डरपोक कहेंगे। कल से तमाम जुबानों और महफिलों का विर्द बन जाओगे तुम। आज के बाद अगर किसी डरपोक की मिसाल देना चाहेंगे तो चूहे की जगह जुहैर इब्ने कैन की मिसाल देंगे।

0: दुल्हन, दुल्हन मैं जाने के लिए आया हूँ।
1: उस तलखी के साथ जाना और इस मिठास के साथ आना, क्या हुआ जुहैर? मौला हुसैन ने तुम्हारे साथ क्या किया है?
0: मैं मौला हुसैन के साथ जाऊंगा।
1: तो फिर तुम्हारे माल का क्या होगा? तुम्हारी तिजारत ठंडी रह जाएगी।
0: सब कुछ तुम्हारा दुल्हन, मेरी सारी दुनिया तुम हो। मेरे पास माले दुनिया से जो कुछ भी है वो तुम्हें बख्श रहा हूँ। तुम्हें तलाक दे दूंगा ताकि मेरे बाद तुम्हें कोई तकलीफ ना हो।
1: तलाक दे दोगे मुझे?
0: ये नामुमकिन है कि मौला हुसैन यजीद की बात करें। मुझे खबर मिली है कि इब्ने ज़ियाद मौला हुसैन के कत्ल पर मामूर है और उसके बदले में बहुत कुछ पाएगा। कूफियों के कई इंसाननुमा भेड़ियों के रेवड़ खरीद लिए गए हैं हुसैन से मुकाबले के लिए। मौला हुसैन के पास तो कोई लश्कर ही नहीं। मौला हुसैन के हमरा हो जाना यानी मौत के घर में कदम रखना। मेरे बाद गोया तुम तलाक याफ्ता हो। क्या ही अच्छा होगा कि अभी तलाक ले लो। जाओ दुल्हन जाओ, अपने बच्चों और मां की खबर लो।
1: बच्चे और माल तुम्हारे बगैर मेरे किस काम के हैं?
0: दुल्हन, मौत हर जानदार का मुकद्दर है। आज ना मरूं तो कल या परसों तो मरूंगा। मौत पर सब्र करना चाहिए, चूंचरा नहीं।
1: तुम्हें तो मौला हुसैन के पास जाने से ही इनकार था। मैंने भेजा था तुम्हें। क्या ये इंसाफ है कि अकेले चले जाओ?
0: मुझे ये रिहाई तुम्हारे तुफेल मिली है दुल्हन। खुदा की कसम, अगर औरतों पर जहाद वाजिब होता तो हम एक साथ मिलकर मौला की रकाब में जाते।
1: मौला हुसैन के अहले हरम भी है जुहैर।
0: काश ना होते दुल्हन। मौला की सारी मजलूमियत उनके बाल बच्चों का होना है। तुम क्यों आना चाहती हो?
1: सिद्ध मत करो दुल्हन, जैसे ही तुम्हें तलाक दे देगा फिर इख्तियार तुम्हारा अपना है।
0: दुल्हन, खुदा गवाह है कि ये तलाक आशिकों की तलाक है। इसके अलावा कुछ और मत समझना।
1: अच्छा हुआ दुल्हन, अब तुम पुरसकून होकर मौला हुसैन की हम सफर बन सकती हो। रवी मुहर्रम की शब थी कि मौला ने काफिले वालों पे एतमाम हुज्जत कर दी और फरमाया, मैंने तुम लोगों से अपनी बैत उठा ली, जो भी रुके वो ये जान ले के कल मारा जाएगा। बाजा साहब ने इजहार वफादारी किया। जुहैर ने भी खुश आवाज बुलबुल की तरह आवाज उठाई।
0: जब हम बरहक हैं तो फिर मरने से क्या डरना, क्योंकि हम रसूल खुदा के दीदार को जा रहे हैं। खुदा की कसम, अगर मैं मर जाऊं और जिंदा हो जाऊं और फिर मर जाऊं और जिंदा हो जाऊं और इसी तरह हजार बार मरूं और जिंदा हो जाऊं, आपको ना छोड़ूंगा।
1: मौला ने तमाम मशालें बुझवा दी ताकि जो भी चाहे चला जाए और रोशनी से ना शर्माए।

0: इतने जुलजुशन, मैं फिलहाल पीछे हटने के हक में हूं। मेरे मौला हुसैन ने कसदे नमाज किया है, मसलहत समझकर फिलहाल वक्ती तौर पर जंग रोक देते हैं। मैं भी अपनी नमाज पढ़ लूंगा और तुम भी कुछ सांस ले लो।
1: इब्ने कैन, जब दोबारा मैदान में आओगे तो मैं खुद तुम्हारा गला काटूंगा, मोटी गर्दन को तोड़ दूंगा।
0: काश एक बार मर्दानगी दिखाकर अपनी बात की लाज रख लो। मैं नमाज के बाद तुमसे लड़ने के लिए मैदान में आऊंगा। वादा खिलाफी करोगे तो कुत्ते से बदतर होगे।
2: जहर ने नैजों और तलवारों के हिसार को तोड़ दिया और किसी परवानी की तरह नमाज इश्क अदा करने आ गया। गोया उस दिन जुहैर का मुकद्दर इतना हसीन था कि अपनी आखिरी नमाज आलम में मलकूत में रिसालत माँ के पीछे पड़े।

0: शर्म की बात है शिमर, किंग का बेटा अब तक दंदनाता फिर रहा है।
1: वो जंग नहीं कर रहा, मौजे दिखा रहा है। वो बिन बाप का न जाने कौन सा शेर का दिल रखता है। चीख मारता है तो लश्कर वाले अपने आप में नहीं रहते।
0: किंग का बेटा तो हुसैन की छोटी उंगली है। हाशमी जवानों का क्या करोगे जो हुसैन के खतरनाक बाजू हैं? अब्बास आ जाए तो क्या करोगे? यकीनन अब्बास मैदान में आ जाए तो सबके सब उसे देख कर ही मर जाओगे।
1: कोई बईद नहीं, अब्बास इब्ने अली का सामना करने के लिए शेर का जिगर चाहिए।
0: ये एक पर एक की जंग बहुत हो गई, जंग को तमाम करो। मैं कहता हूँ पूरे लश्कर के साथ खैमों पे हमला करके हुसैन के शर को मिटा दो।
1: फिलहाल हुसैन ने नमाज का इरादा किया है, वो चाहते हैं कि हम जंग रोक दें ताकि वो नमाज अदा कर लें।
0: पढ़ने दो शिमर, पढ़ने दो, बाद नमाज के उसका काम तमाम कर दो।
2: क्या वाकई आप हुसैन को नमाज पढ़ने देना चाहते हैं?
0: नमाज एक शरई फरीजा है बेटे, हम एक वाजिब फरीजे की अदायगी में ममानियत नहीं कर सकते।
2: तो फिर आप जंग हार चुके हैं।
0: कैसे?
2: ये लोग हुसैन को मारने आए हैं क्योंकि ये लोग समझते हैं कि हुसैन दीन से खारिज हो चुके हैं। जब ये लोग देखेंगे कि हुसैन ने नमाज पढ़ने के लिए जंग रोकी है तो समझ जाएंगे कि उन्हें धोखा दिया गया है।
0: क्या पुख्ता राय है, क्या ऐसा नहीं है शिमर?
1: जी हाँ, शहजादे की राय बहुत ज़रीफ और गहरी है। भई नहीं कि हुसैन इस काम से सोए हुए कुफियों को बेदार करना चाहते हों।
0: तो फिर हमें हुसैन को नमाज पढ़ने नहीं देने चाहिए, है ना?
1: क्या अर्ज करूं, आप अमीर हैं और हम सिपाही।
0: नहीं शिमर, नहीं, उन्हें नमाज मत पढ़ने दो।

सुहेल लम्हे भर के लिए टिकना नहीं चाहता था। मैदान की तरफ जाने के लिए उस बच्चे की तरफ था जो माँ के लिए बाहें फैलाया हुआ हो। नमाज के बाद

0: उसकी हिकमत, इरादे के लंगड़े पैर हैं वो साख।
1: आपको हक है कि मेरी सरजनिश करें।
0: मैं तुम्हारी सरजनिश नहीं कर रहा बंदे खुदा, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं। ये लंगड़े पैर बाईस हुए कि हम सफर बनता अपने मजलूम भाई हुसैन का। कट जाए पाँव, कट जाए पाँव, कट जाए पाँव।
1: मैं हिजाज आया हूं ताकि अपने जैसों की गफलत का इजाला कर सकूं।
0: कैसे इजाला करना चाहते हो?
1: हाथ बढ़ाइए ताकि बैठ करके आले अली का हक गासिबों और जालिमों से छीन सकूं।
0: मुझे अपना पेशवा मानते हो?
1: आप हैदर कर्रार के फर्जंद हैं, वारिस खून शहीद मौला हुसैन। खुदा जानता है कि मैं भी कलबी तौर पर हजरत सज्जाद को अपना इमाम जमाना मानता हूँ। मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि मुझे हुक्म जहाद के बारे में उनका फरमान मालूम है। मैं और आप शरण हक को फैला सकते हैं।
0: मुख्तार अली का मानने वाला ताबे और ताबेईन का फरीसा फिलहाल मुसीबत पर सब्र।

0: दर्द दिल का इलाज करता है। इश्क इससे समाज करता है। करबला में वो कल अकेला था, आज हर दिल पे राज करता है। शहंशाह हुसैन, शहंशाह हुसैन,
1: सिर्फ तुझसे दो

मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो हर साल करबला में आपके रोज़े की ज़ियारत करते हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो हर साल करबला जाने वाले काफ़िलों को हसरत से देखते हैं और हर ज़ायर से रो रो कर कहते हैं, मेरे मौला को मेरा सलाम कहना और मेरा पैगाम देना।

0: मैं खुद तुम्हारी छावनी को पार करके यहाँ आया हूँ कि तुम्हें बता दूं कि मुझे तुमसे या तुम्हारे सरबाजों के जुनून आमीज नारों से कोई खौफ नहीं।
1: बिल्कुल, मैं जानता हूं कि उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास के पास खौफ नाम की कोई चीज नहीं। अब जब आ ही गए हो तो चलो कुछ देर मेरे खेमे में आराम कर लो और फिर बैठ के बात करते। एक मुद्दत से हमने एक दूसरे को नहीं देखा है मोमिन।
0: न मैं तुम्हारा मेहमान हूं न ही तुम्हारे खेमे में मेरी कोई जगह है। तन्हा आया हूं कि जानू तुम चाहते क्या हो।
1: मैं क्या चाहूंगा? कुछ नहीं, बस खुदा की खुशनूदी और रसूल खुदा की कामयाबी। मुझे और क्या चाहिए?
0: मैं तुम्हारी मक्कार बातों को समझता हूँ पिसरे सखर। बताओ क्यों बार बार कासिद भेजते हो और मुझसे मिलना चाहते हो?
1: वल्लाह कोई हीला और मक्कारी नहीं है, बस ये चाहता हूँ कि तुमसे तन्हाई में गुफ्तगू करूँ ताकि तुम्हें राह हक को सवाब दिखाऊं और अपनी हुज्जत तमाम कर दूं।
0: क्या मैं भी अब तक राह हक पे नहीं हूं कि तुम्हें मेरी हिदायत का इरादा आ गया है?
1: मैं नहीं कहता हूं कि तुम नहीं हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि तुम हो।
0: क्या हमने फर्जंदे रसूल का दामन नहीं थामा है और तुम उनकी मुखालिफत में हो?
1: नहीं।
0: क्या मैं हसन इब्ने अली के लश्कर का सिपह सालार नहीं हूं और तुम शैतान के लश्कर के?
1: मैं ऐसा ख्याल नहीं करता।
0: तुमने खलीफा वक्त के खिलाफ बगावत नहीं की?
1: नहीं, ख्याल नहीं आ रहा है, लेकिन इसका मुनकिर भी नहीं हूं। मेरे और हसन इब्ने अली के लश्कर के दरमियान कुछ बदगुमानी हो गई जिसकी वजह से हमारा लश्कर उनके लश्कर के मुकाबिल हुआ। लेकिन अगर तुम गौर करोगे तो समझ जाओगे कि हकीकत कुछ और है। वो हदीस तुमने नहीं सुनी? अल-अमाल बिन-नियात।
0: खुदा तुझे माफ ना करे, तू धोखा और फरेब के अलावा कुछ नहीं जानता।
1: नहीं,

जाओ, तुम सलामती से जा सकते हो, मगर ये जान लो कि तुम हक बात सुनने की सलाहियत नहीं रखते।

0: मेरी एक शर्त है।
1: कैसी शर्त?
0: इससे पहले कि हमारी तलवारें टकराएं, मेरे चंद सवालों के जवाब दो।
1: मुझे मालूम था तुम फरेब का सहारा लोगे। सिफीन में भी तुमने यही चाल चली जब अली मुर्तजा ने बुलाया था।
0: तो तुम अपने आप को अली के बराबर समझते?
1: माज़ल्लाह,
0: अगर तुम मेरी जगह होते तो कबूल कर लेते। सदाकत से जवाब दो इब्ने अब्बास, क्या तुम अली की जुल्फिकार के सामने टिक सकते थे? देखो, मैं अपने सिपाहियों के सामने कह रहा हूं, बिला झिझक और बगैर किसी शर्म के कह रहा हूं कि मैं मुआविया इब्न अबी सुफयान अली इब्न अबी तालिब के साथ मुकाबले की ताकत नहीं रखता था। क्या मेरा ये कहना मेरी सदाकत की दलील नहीं है?
2: यानी चे
0: अब तुम भी मेरी तरह हिम्मत से काम लो और साफ साफ कह दो कि हसन इब्न अली की बयात क्यों की?
1: इसलिए कि उनको अली मुर्तजा का जानशीन और वली अमर मुस्लिमीन मानता हूं।
0: ये तुम अपने दिल की गहराई से कह रहे हो?
1: वल्लाह बिल्कुल ऐसा ही है।
0: क्या मुतमईन हो कि कोई दूसरा इरादा इस बयत में शामिल नहीं है?
1: मैं मुतमईन हूं।
0: क्या तुमने हसन इब्ने अली की बयत इस मकसद से नहीं की थी कि उसके जरिए तुम उन्हें मेरे साथ जंग पर उभारो?
1: नहीं, मैंने बगैर किसी शर्त के उनकी तरफ हाथ बढ़ाया।
0: क्या बुसर इब्ने अर्तात उस मलून ने तुम्हारे दोनों बेटों का सर नहीं काटा?
1: उस शैतान का अमल हसन इब्ने अली की बयत से रब नहीं रखता।
0: तो क्या तुम मुझे अपने दोनों फर्जंदों के कत्ल का जिम्मेदार नहीं जानते?
1: हाँ जानता हूँ, लेकिन
0: नहीं, तुम अपने फर्जंदों की खूंखाई के खातिर हमारे मुकाबले में आए हो, न हसन इब्ने अली की मोहब्बत में।
1: तुमने फर्जंदे रसूल खलीफे वक्त के खिलाफ खुरूज किया है और सिर्फ तलवार की जबान समझते हो, और यही दलील है हमारे और तुम्हारे रूबरू होने की।
0: तुम मुतमईन हो?
1: हाँ मैं मुतमईन। तुम्हारी चाल अली मुर्तजा के साथ भी यही थी, सिफीन भूल गए।
0: तुम सच समझो या झूठ, सिफीन का मकसद कुछ और था। खूने उस्मान दरमियान में था, भूलो नहीं कि तलहा और जुबैर भी इसी राह पर चल रहे थे। लेकिन अब वो दिन नहीं है, न यहां सिफीन है और न हसन अली। हसन रऊफ है, हसन दिलसोज है और मुस्लिमीन के जान माल का फिक्रमंद भी। वो फर्जंद दिल बंदे रसूल खुदा है, उसके चेहरे पर वही नूर था जो रसूल खुदा के चेहरे पर था।
1: ये बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती।
0: मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि पैगंबर हसन को अपने कांधे पर सवार करते थे। उस वक्त तुमने देखा कौन सी उनकी खूबियां हैं जो मैं नहीं जानता, और क्या क्या तारीफें पैगंबर से मैंने नहीं सुनी।
1: बंद करो अपने मुंह को।
0: क्या इसके बावजूद भी मुमकिन है कि मैं उस पर तलवार चलाऊं?
1: क्या तुमने तलवार नहीं खींची है?
0: मैं हसन इब्ने अली का दुश्मन कैसे हो सकता हूं?
1: तो क्या तुमने दुश्मनी नहीं की?
0: कैसे मुमकिन है कि मैं उस पर और उसके अहले बैत पर जुल्म सितम ढाऊं?
1: तुम झूठ कहते हो।
0: क्या मुमकिन है कि मैं उनकी बेहुर्मती करवाऊं?
1: वल्लाह तुम झूठ बोलते।
0: मैं ऐसा नहीं कर सकता, खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा। जमाने की गर्दिश और बदकिस्मती ने मुझे ऐसी कौम का सरबराह बना दिया है जो कि बनी हाशिम की खिलाफत मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? हसन बनी हाशिम से हैं,

0: तुम्हारा मतलब वो मुआविया से मिल गया है?
1: कैसे मुमकिन है वो मुआविया से मिल जाए?
0: साले, नमाज का वक्त हो गया है, अजान दो। सुनो हर्ब, नमाज के बाद सालेह के साथ तुम भी कूफा चले जाना और बैत इमाम की हिफाजत अपने जिम्मे ले लेना। अगर वाजिब समझो तो उन्हें कूफे से बाहर ले आना, लेकिन इस बात की खबर किसी को न पहुंचे। शायद इस खबर के पहुंचने पर माविया के जासूस अबा मोहम्मद पर दबाव डालने के लिए फितना व बलवा खड़ा कर दें।
2: ठीक है,
0: फिर मेहराब में कौन खड़ा होगा? मैं, हसन इब्ने अली ने जब उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास को लश्कर की सरदारी दी तो फरमाया, अगर उबैदुल्लाह कत्ल हो गया तो कैस, और अगर कैस कत्ल हो जाए तो सईद लश्कर के सरदार होंगे। तो लोगों को क्या जवाब देंगे अगर उबैदुल्लाह का पूछे? हमें क्या मालूम कि उबैदुल्लाह पे क्या गुजरी, हम नहीं जानते।

सोचो क्या करोगे कैस, लोग इंतजार में बैठे हैं, कोई चारा नहीं है, चलिए उनके सवाल का जवाब दें। आइए।

0: तुम लोग क्या जानना चाहते हो?
1: इस छावनी में क्या हो रहा है? आज तुमने क्यों नमाज पढ़ाई? उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास कहाँ हैं?
0: उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास का जानना चाहते हो? सुनो, बताता हूँ।

सुनो ए लोगो सुनो, उबैदुल्ला इब्न अब्बास हमारे पास है। कल रात वो खुद चलकर अमीर अल मोमिनीन मुआविया इब्न अबी सुफियान के खेमे तक आए और लाखों दिरहम का इनाम पाया।

0: क्या कह रहे हो शिम? मुआविया से मिल जाए,
1: इसे हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि अबू सुफियान के बेटे से मिल जाए, वरना हम सब की जानें खतरे में
0: है। कैसे हो सकता है?
2: इब्ने उमर ने मदाइन से खबर दी है कि जासूसों और गारतगरों ने अबा मोहम्मद के लश्कर का शेराजा बिखेर दिया है। सुनो भाइयों, मेरी बात गौर से सुनो, अब कोई भी किसी पे एतमाद नहीं करेगा। आए दिन लाशें मुसलसल खेमों से बाहर आ रही हैं और बहुत से लोग खौफ खाकर मुसलसल फरार हो रहे हैं।
1: आमादा रहना चाहिए कि मुनासिब वक्त पे कूफे पे काबिज हो जाए और इससे माविया से तकर्रुब का जरिया बनाए।
0: अच्छी बात है तो ठीक है, फिर तो हमें माविया के करीब हो जाना चाहिए।
1: ठहरो, मैं बताता हूँ, बात सुनो। इससे पहले के हम लोग क्या हुआ, कहाँ चले?
2: जौदा मुझसे मिलने आई है।
1: तुम्हारी बेटी?
2: हाँ जरूर, कुछ काम होगा।
3: सलाम पिदर।
2: अलैका सलाम बेटी, क्या बात है, क्यों परेशान नजर आ रही हो, क्या कोई बात हो गई है?
3: तुम सच कह रहे थे, हसन इब्न अली जन खाइन के दरमियान फंस गए हैं। सच जानना चाहते हो? जब मैं तुम्हारी बातों को सुनती थी तो मुझे यकीन नहीं होता था कि इस तरह भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं जानती हूँ कि मेरा बाप मेरी भलाई और रसूल खुदा के फर्जंद की खैर ख्वाही के अलावा कुछ नहीं सोचता।
2: बताओ बेटी, क्या बात हो गई है?
3: हसन इब्न अली के सरदार एक एक करके उन्हें छोड़ रहे हैं और माविया से जा मिल रहे हैं।
2: क्या बात कर रही हो बेटी, मेरी जान मुंह को आ रही है।
3: हसन इब्न अली के चचाजाद भाई उबैदुल्लाह इब्न अब्बास, जो उनका सिपे सालार और हसन इब्न अली का सबसे नजदीक था।
2: मगर उबैदुल्लाह ने क्या किया?
3: अभी खबर आई है कि उबैदुल्लाह इब्न अब्बास फरार कर गया और हजारों दिरहम के अवज माविया के लश्कर में शामिल हो गया है।
2: सच कह रही हो? यह खबर कौन लेकर आया है?
3: हर्ब इब्न अब्दुल्ला और साले बिन हारिस अबा मोहम्मद के दो बावफा साथी आए हैं ताकि इनके घर की हिफाजत करें, इसलिए कि कोई मुझे नुकसान ना पहुंचाए।
2: वाह मुसीबता, तुम्हें यकीन है कि यह खबर सच है?
3: हाँ पिदर, जब हर्ब ने उबैदुल्लाह इब्न अब्बास के फरार की कैफियत बयान की तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और रंजो अलम से रो रहा था। उन्होंने तेजी से अपने घोड़े दौड़ाए ताकि खबर के मुंतशिर होने से पहले वो खुद कूफे पहुंच जाएं।
2: बहुत अच्छा, अब तुम घर लौट जाओ बेटी और अपने हवास को कायम रखो। जो भी नई खबर सुनो फौरी इत्तेफाक हो मुझे फौरन खबर दो, फौरन खबर दो।
3: पिदर, आप हसन इब्ने अली को तो तन्हा नहीं छोड़ेंगे?
2: मालूम है, ये कैसा सवाल है?
3: मेरा मतलब बुरा नहीं था, मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि आप उनकी किस तरह मदद करेंगे।
2: सोचना पड़ेगा, मैं अपने दोस्तों से मशवरा करूंगा कि किस तरह से उनकी मदद की जाए। घबराओ नहीं, जल्दी कोई रास्ता निकाल लेंगे। अब तुम घर लौट जाओ और जैसा मैंने कहा है उसी तरह सारी चीजें अपनी नजर में रखो।
3: जी अच्छा।
2: हाँ, कुछ नाम तुमने बतलाए थे, एक हर्ब इब्न अब्दुल्ला था और ये दूसरा कौन था?
3: साले पिसर हारिस।
2: हाँ हारिस, इन दोनों पर एतमाद ना करो, ये लोग उबैदुल्ला और किंदी से अलग नहीं है। उस हारिस को मैं खुद पहचानता हूँ, ये माविया के जासूसों में एक जासूस है, खुद को अबा मोहम्मद के मानने वालों के उनवान से उनसे नजदीक हो गया है और मौके के इंतजार में है कि कब कारी जर्ब लगाए। ये दोनों आदमी भी उसी के हैं, याद रखो उसी के हैं।
3: जी अच्छा,
2: अब तुम चली जाओ।

0: अच्छा, उसने क्या कहा? कोई खबर लाई?
1: ऐसी खबर लाया हूं कि अगर तुम्हें बता दिया जाए तो तुम्हारे होश उड़ जाएं।
0: कैसी खबर?
1: जबान मेरी मुफ्त में नहीं खुलेगी। अगर सुनना चाहते हो तो सिक्कों से मेरा मुंह भरना पड़ेगा।
0: बकवास कर रहे हो, खोलो अपना मुंह।
1: महाल है कि मैं अपना मुंह खोलूं?
0: ये मजाक का वक्त नहीं है, बताओ क्या हुआ।
1: अभी मेरी बेटी जौदा, जो अबा मोहम्मद की बीवी भी है, जो उसी घर में रहती है, जो घर में

0: अब हमें क्या करना चाहिए?
1: शिवर, अब हम क्या करें? बताओ ना।
2: हालात अजीब तरीके से करवट लेंगे, अहम इत्तेफाक होगा। अब तुम लोग जाओ, हालात पर नजर रखो, जाओ।
1: ठीक कह रहे शिव, हमें होशियार रहना चाहिए, हमें शहर के हालात पर नजर रखनी चाहिए। अब क्या होगा शिव?
2: जाओ, सिर्फ हिफाजत करना, हम बाद में फैसला करेंगे। चलते हैं।
3: कहाँ?
2: अमरीन ने हुरैस के घर।

0: मोहम्मद।
1: आओ मोहम्मद, क्या बात है?
2: उबैदुल्लाह फरार हो गए।
1: क्या कहा?
2: लश्कर को छोड़कर बताए बगैर भाग गए।
1: उबैदुल्लाह
0: उबैदुल्लाह
1: याकूब और कैस की खबर कर।

0: Salamun alaykum.
1: Alaykum.
2: Teşrif dahi.
3: हम सुलह नहीं करेंगे हम लड़ेंगे हम मुआविया के साथ लड़ेंगे हम सुलह नहीं करेंगे कभी सुलह नहीं करेंगे
0: हम सुलह नहीं करेंगे हम जंग करेंगे मुआविया के साथ जंग करेंगे
4: हुज्र अदी मुगैरा इधर क्या कर रहा है मुआविया की जानिब से अबा मोहम्मद के लिए क्या पैगाम लाया है
5: हमें क्या मालूम वो हसन इब्ने अली से बात करने आया है
6: हसन इब्ने अली ने क्यों हिंदा की औलाद के कासिद कबूल किया
7: क्यों कबूल किया
8: सही है
7: क्यों कबूल किया उस कासिद को
8: क्या ये सही है क्या ये सही है
5: हाँ कबूल किया है सिर्फ मुस्लिमीन की बहबूदी की खातिर हम उनके फरमान में हैं वो हमारे फरमान में नहीं है
4: क्या ये सही है कि अबा मोहम्मद उबैदुल्लाह के तस्लीम होने के बाद मुआविया से सुलह करना चाहते हैं
8: क्या ये सही है क्या ये सही है क्या ये सही है
4: क्या ये सच है कि उबैदुल्लाह के भाग जाने के बाद मस्कन की सिपाह मुंतशिर हो गई है
5: झूठ है आज सुबह मस्कन से कासिद आया है कैस इब्ने साद ने लश्कर की सालारी अपने ओहदे ले ली और इमाम के फरमान के मुंतजर है
4: ठीक है हम यही इंतजार करते हैं जब तक के मुआविया के भेजे हुए बाहर नहीं आ जाते और हसन इब्ने अली हमें बता नहीं देते कि इनके दरमियान क्या बातचीत हुई है
8: ये सही है ये सही है ये सही है ये सही है
9: वो देखो जासूस मिल गया
4: कौन सा
9: वही जो हमारा सरगना है और जो हमें कूफे में एक बार तलाश भी कर रहा था
4: कहाँ
9: वो देखो सामने
4: हम इंतजार करेंगे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ मैं कह रहा हूँ बैठ जाओ बैठते क्यों नहीं
9: खुदा की कसम अगर हसन इब्ने अली ने मुआविया के साथ सुलह कर ली तो मैं भी वही करके रहूंगा जो इब्ने मुल्जिम ने किया
5: खुदा की कसम तुमने मेरे दिल की बात कही है मैं भी यही सोच रहा था

0: क्या तुम वाकई मेरा साथ देने के लिए तैयार हो ताकि हम दोनों इस काम को आखिर तक पहुंचा दें?
1: जी हाँ जी हाँ,
0: चाहे हम लोगों की जान भी खतरे में पड़ जाए।
1: हाँ जरूर।
0: तो लाओ अहद करते हैं, दोनों मिलके उसे कत्ल करेंगे चाहे हमारी जान भी चली जाए।
2: मुगैरा ने फितने की नीयत से मदाइन में कदम रखा था। वो इस बात पर मामूर था कि खवारिज के सरदारों, बुजुर्गान कूफा और कबाइल के रुआसा के खयानत आमेज खतूत के बारे में इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मुत्तल करें और इमाम को उनकी हिमायत से नाउम्मीद कर दें। ये वही लोग थे जो इमाम की बैत के लिए नहायत मुश्ताक और बेताब थे। इमाम ने कूफियों के खतूत और उनके दस्तखत को कोई अहमियत नहीं दी, इसलिए कि पहले से इमाम को इस बात का ख़दशा था, क्योंकि उनके रुझानात, हवसरानियों और अखलाकी गिरावट से बखूबी वाकिफ थे। दावत जिहाद के इब्तदाई लम्हात ही से इस दो चेहरे रखने वाले मुनाफिक और फरेबकार गुरोह ने उनके लिए बहुत सी मुश्किलात खड़ी कर दी थीं। लिहाजा इमाम ने मुगैरा से मुखातिब होकर फरमाया, मैं उन्हें पहले से और तुम से ज़्यादा पहचानता हूँ और उनकी दुनिया परस्ती और लालची तबीयत का तजर्बा रखता हूँ। फिर मुगैरा और उसके साथियों को फरमान इलाही की पैरवी और गुनाहों से दूरी और सरकशी से इज्तनाब की दावत दी और साथ खुदा और रसूल खुदा के सामने उनकी जिम्मेदारी उन्हें याद दिलाई। लेकिन जैसे ही मुगैरा ने खेमे से बाहर कदम रखा, दो पहलू और किनाया आमेज अल्फाज में मदाइन में सुलह साजिश की राह हमवार करने के हवाले से अपने नापाक अजायम से लोगों को आगाह करके फितने की आग को और भी भड़का दिया।
3: मुगैरा, हमें बताओ तुमने हसन इब्न अली से क्या बातचीत की है?
4: हसन इब्न अली खुद तुम्हें बता देंगे अगर जरूरी समझे।
3: बिल्कुल जरूरी है।
4: मैं फकत इतना ही कह सकता हूँ कि हसन इब्न अली से ज्यादा कोई भी मुसलमानों के जानो माल का हमदर्दो खैर खान नहीं है।

0: सुना सुना तुम लोगों ने, सुना उस मलूर ने क्या कहा, क्या समझा उसकी बातों से? उसकी बातों से सुल और साजिश का पता नहीं लगता। क्यों शोर कर रहे हो? शोर ना करो, आराम से बैठ जाओ, खामोश हो जाओ। शोर करने से कोई फायदा नहीं।
1: वही तो हो तुम लोग जिसने खुशी से हसन इब्ने अली के हाथ पर बयात की थी। अब तुम्हें क्या हो गया है ना मर्दो, पल पल में क्यों रंग बदलते हो?
0: हसन इब्ने अली मुआविया के साथ सुलह करना चाहते हैं, समझे? मुआविया के साथ सुलह करने का सोच रहे हैं।
2: जो भी मुआविया के साथ सुलह करे उसका खून मुबाह है।
3: फिर से खवारिज ने फितना खड़ा कर दिया।
0: खुदा लानत करे खवारिज पर। खवारिज तो सिर्फ फसाद डालना जानते हैं। क्या तुम लोगों ने बेयत नहीं की?
3: खुदा की लानत हो तुम पर, तुमने इनके बाप अली के साथ भी यही किया जो इनके साथ कर रहे हैं।
0: हम मुआविया के साथ सुलह नहीं करेंगे।
4: चलो हमला करो,
0: आग लगा दो, जला दो।
2: अरे तुम सुलह करते हो?

0: हमला करो।
1: आपका रास्ता कहाँ है?
0: दो, फेंक दो, लगा दो आग।
2: अबा मोहम्मद कह रहे हैं मत लड़ो, अपने भाइयों को कत्ल ना करो।
0: लगा दो, लगाओ आग, मार डालो। जला दो इनको, खाकिस्तर बना दो बिल्कुल। आगे बढ़ो, बांटते रहो।
2: अबा मोहम्मद कह रहे हैं अपने भाइयों को कत्ल मत करो।
3: सनी बिन अली के खेमे को जला दो, जला डालो।
4: मुझे हसन इब्न अली की अबा मिल गई है।
0: चलो चलो,
4: हसन इब्न अली की अबा है ये। देखो हसन इब्न अली की अबा लाया हूँ, उनका खैमा हमने जला दिया। हसन इब्न अली की अबा मेरे पास है।
5: हसन इब्न अली की अबा है, मेरा सलाम उन तक जरूर पहुंचाना।
4: जाओ जाओ, उनकी मदद करो, जाओ जाओ।

0: अभी अभी अबा मोहम्मद का एक कासिद इस पैगाम के साथ आया है कि मैं अमीरुल मोमिनीन की नियाबत में अबा मोहम्मद के दीदार के लिए जाऊं।
1: क्या क्या कहा? अमीरुल मोमिनीन मुझे कह रहे हो?
0: जी अमीर।
1: यानी अबा मोहम्मद ने तुमसे कहा है कि मेरी

0: नयाबत में उसे देखने के लिए फिर से आ जाओ।
1: जी अमीर।
0: नहीं समझा।
1: खबर लाए हैं कि मदाइन की छावनी पर फितना और फसाद बरपा कर दिया गया है। आपका अपना ही एक जासूस था।
0: फिर से तुम्हारे जासूसों ने झूठी खबर लाई।
1: नहीं सरकार, मेरी मुराद यह है कि इस फितना और फसाद के बाद शायद आबा मोहम्मद आपके साथ सुलह के हक में बैठ जाए।
0: तू अपनी तरफ से बकवास न कर। सुलह की कोई बात नहीं। वो सुलह नहीं चाहता था। वो हमसे हरगिज सुलह नहीं करेगा। ये झूठ तो हमने गढ़ ली थी कि वो सुलह चाहता है। अब इसके इस पैगाम में जरूर कोई हिकमत है।
1: मगर जासूस ये खबर लाए हैं कि
0: नाम न लेना अपने जासूसों का।
1: मेरा इरादा नहीं था कि आपको रंजीदा कर दूं अमीर, लेकिन अगर तय हो जाए कि मैं वहां जाऊं और आबा मोहम्मद मुझसे सुलहनामे पर दस्तखत करवाएं तो हमें क्या करना चाहिए?
0: वो जो भी चाहे कबूल करना, उसकी हर शर्त मान लेना।

0: हमें जल्दी करना चाहिए।
1: हाँ, इन्हें हलाक कर देना चाहिए
0: इससे पहले कि वो माविया के साथ अहद करे। उन्हें मार कर घोड़ों की तरफ भागना। मैं तलवार से उनके साथियों का रास्ता रोकूंगा ताकि वो तुम्हारा पीछा ना कर सके। चलो।
2: जजीरतुल अरब में दीन इस्लाम की बुनियादों के मुस्तहकम होने से लेकर आज तक वो इतनी बड़ी